सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनो वालों, आज भी फिर बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 6 अगस्त का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर, तार का नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर है 0322666611। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए। उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल भी कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी पेश किया जा रहा है, हॉलैंड देश के बीच में मेड नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोटरकार में अपना घरों में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। हम देख रहे हैं रेडियो SBS का ऐप पर दूर दूर से ऐप अंदर आते हैं सुनने वालों बस गुड मॉर्निंग खुद मोर्ख कहते हैं आप सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है ऐप कर रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है अनहेल खुद मोर्ख और प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। 7:00 प्रोग्राम में 13 मिनट व्यतीत हो चुका है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर तार का नंबर है 030-262-6611 इसी तार की नंबर के जरिए आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं। चले अब की बार भजन जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में विपिन के आवास में

की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। हम देख रहे हैं देश विदेश में भी बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं। दुबई में, मॉरिशियस, इंग्लैंड में, स्वीडन, इंडिया, भारत देश में काफी सुनने वालों है जो हमारा ये प्रोग्राम को सुनते हैं। सूरीनाम देश में भी, पुर्तगाल और ऐसे बहुत से देशों है जहां पर सुनने वालों बस रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। जर्मनी, बेल्जियम, सभी को स्वागत किया जा रहा है देश विदेश में जहां जहां पर भी आप सभी रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी हम देख रहे हैं सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं और साथ ही साथ वियतनाम में भी सभी को वेलकम। चले अगला भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा शिव जी का भजन आज बृहस्पतिवार की खास सुबह की प्रोग्राम में, प्रोग्राम भजन

दिवस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों जो ऑस्ट्रेलिया में, इटालिया और होंगकांग में हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं, उन सभी को भी वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। बहुत से सुनने वालों होते हैं अमेरिका में जो हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है। एक भजन आज की प्रोग्राम में हम पेश करने वाले हैं हमारे सुरीनाम देश का मशहूर गाने वाला मिका सुक्खू जी की आवाज में। चले मिका सुक्खू जी की आवाज में मरहूम मोहम्मद रफी का एक गाया हुआ भजन बस मिका सुक्खू जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर भजन हमारा सूरीनाम देश का मशहूर गाने वाला मीका सुक्खू जी की आवाज में ये अति सुंदर भजन बस पेश की गई है। और इस भजन पर भी मीका सुक्खू जी का भजन पर रिएक्शन भी आया है ऐप द्वारा, और वो भी इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश अपना रिएक्शंस दिया है इस भजन पर कि मीका सुक्खू जी बड़ी ही सुंदर रूप में ये भजन को गाए हैं, पूरी भावना के साथ फुल इमोशन के साथ ये भजन को गाए हैं। अरुणेश आपके रिएक्शंस के लिए इस भजन पर लाख लाख धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हेडलाइन न्यूज की ओर और देखते हैं कहां कहां पर हॉलैंड देश के अंदर में ट्रैफिक है, जबकि इन दिनों हॉलीडे है, कम ट्रैफिक होगा हॉलैंड देश के अंदर में, लेकिन कहीं कहीं रास्ते जो है बन रहा है और तो ये भी आपको खबर किया जाएगी।
1: दिस इज एडो पीटर्स मेट द हाफपॉइंट्स ऑफ द रेडियो न्यूज ऑफ रेडियो SBS। Het dodental door ebola, de Democratische Republiek Congo, is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen nog enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: सर है 7:00 प्रोग्राम में 2 मिनट वेटेड हो चुका है रेडियो SBS की। सर ये प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब की बार भजन जो प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक सुंदर सा राम जी का भजन प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अशोक घरे की आवाज में। चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं।

सा भजन अशोक घरे की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की सरिया भी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट पर रोजाना आपका दाख हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र भी होता है। हर एक समय पर आप जाकर देख सकते हैं, हर या कहिए रोजाना आपका नया दाख हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र रेडियो SBS का वेबसाइट पर बस होता है। चलिए तार अंदर आते हैं और सुंदर भजन आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है विपिन सच देवा की।

विपिन और साथियों के आवास में, विपिन सचदेवा और साथियों के आवास में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। अब की बार भजन जो प्रोग्राम में पेश होगा शर्मा जी के आवास में, पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा जी के आवास में एक सुंदर भजन बस प्रोग्राम।

पंडित गैनिंद्र शर्मा जी की आवास में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले अब की बार राजेश चतुर्वेदी की आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है और इस भजन के बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुंदर भजन बस रजेश की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार है और चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं शिव जी का आरती भजन की ओर। और ये सुंदर आरती भजन अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में आप सुनेंगे और पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और खास तौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए ये सुंदर आरती भजन बस पेश किया जा रहा है। और सभी को एक शुभ सुबह, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मसीहा फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों शहर उत्तराख से रेडियो SBS का प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है। इस वक्त प्रोग्राम भी बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। सुबह की वक्त है, अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। एक प्रोग्राम जो रोजाना, हाँ रोजाना बहुत से सुनने वालों बस इंतजार कर रहे हैं, जिसमें पुरानी से पुरानी नगमे आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तो तकरीबन 9 बजे से जरूर आप सुनते ही रहना पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: रेडियो SBS की सर ये उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो उम्मीद है फिल्म मुस्कान का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है।
1: रेडियो SBS 24 hours with the best music।
0: फिल्म दिल का रिश्ता उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। 8 मिनट बाकी है सुबह 8:30 बजे में।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए अब की बार उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म बाजी का गीत पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0365 65 65 60। जुबिन और नीति मोहन प्रोग्राम में

0: सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। चले आपके बार ये गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। भूमि फिल्म का नाम है।
1: तारीफों के पुल बांध रहे हैं होने वाले मियां के, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

एम जोनीटा गांधी की आवाज में ये गाना पेश की गई अर्ध फिल्म भूमि एस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन लाइव शहरू तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अभी बार फिल्म बागी, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी या चाय के साथ। तो चले पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की आवाज में बस पेश किया जा रहा है। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम, धूप का मौसम, इस वक्त बाहर की ओर हम देखते हैं किशोर कुमार।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और इसी तार के नंबर पर टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो या कहिए रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी आप कर सकते हैं। 9:11 व्यतीत हो चुका है। हो सकता है शायद इस वक्त आप घर पर या कहीं पर भी मौत कार में है और शायद गाना कोई गीत याद आ गए है और आप सुनना चाहेंगे रेडियो SBS के जरिए, तो जरूर हमें खबर कीजिए। तारीख नंबर 030-265-6560 पर आप तार कीजिए, या तो ऐप भी आप कर सकते हैं, ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर।

0: SBS के जरिए संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है। सुनवालू रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनवालू काफी सालों से बस सुनते हैं और आपको मालूम होना चाहिए इसी महीना में 41 साल यानी कि एनन फिर तक यार होगा कि रेडियो SBS का प्रोग्राम उत्तराखंड शहर से बस पेश किया जा रहा है।
1: Radio SBS, the best Bollywood station.
0: Kishore Kumar and Lata Mangeshkar program be. Ha, kafi saalon se Radio SBS ka program bas pesh kiya ja raha hai.

मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो

लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उसी सुनने वालों है जो स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं कुछ बातें करने के लिए, और बहुत सी सुनने वालों है जो ऐप किया है ऐप के जरिए भी तार कर रहे हैं। सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। मैंने कहा ना, अगर आप प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं तो आज की प्रोग्राम में हम आपको मौका देते हैं ताकि आप तार द्वारा ऐप द्वारा एक गाना को आप मांग कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी गीत याद आ गए है तो आप जरूर हमें इतला कीजिए, तो जरूर आपके नाम के साथ हम आपके लिए गाना पेश करेंगे। कभी कभी आपको हम मौका देते हैं तो कहते हैं ना, मौका के फायदा उठाना चाहिए। इस तरह से रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना भी हमारा प्रोग्राम हमेशा और हमेशा फॉलो कर रहे हैं, ऐप द्वारा भी हमेशा रिएक्शंस देते रहते हैं। तो सबीना आपको भी अनहेल खुद मोर्ख शुक्रिया कि आप भी हमारा प्रोग्राम में साथ देते हैं और आपने एक बड़ी ही खूबसूरत गाना मांग किया है फिल्म लव इन टोक्यो, उसी फिल्म का एक बड़ी ही खूबसूरत गाना जो लता जी ने गाई है। तो चले मिलकर सुनते हैं सबीना, रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना की मांगी हुई गाना। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो। हमारी सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, संगीत भरी स्टेशन।

Love in Tokyo, फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना, ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। सबीना शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, फॉलो करते ही रहना।

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten extra reistijd.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Maak je dag compleet en luister Radio SBS.
3: Radio SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया कि आज के प्रोग्राम में आप सभी सुनवालों जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, आप सभी को पूरा मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए। कुछ सुनने वालों तार कर रहे हैं, कुछ सुनने वालों ऐप द्वारा रेडियो एसबीएस का ऐप के जरिए तार कर रहे हैं और कुछ सुनने वालों है जो ऐप कर रहे हैं अपना अपना गाना। आज के प्रोग्राम में आप सभी को पूरा मौका दिया जा रहा है अपना मनचाहत गीत या तो गाना जो आप गुनगुना रहे हैं मांग करने के लिए। Utrecht Leidse Rijn Girdhari straat का रहने वाला राजन गिरधारी हमारा प्रोग्राम हमेशा मेरा ख्याल से ये 24 घंटा लगातार हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। रात को बिस्तर में सोते सोते और दिन में अपना खूबसूरत गार्डन में टाइल में बैठ कर हाई वॉल्यूम के साथ रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं। मुझसे कहा कि ये हम हाई वॉल्यूम के साथ रेडियो सुनते हैं ताकि अगल बगल के लोग भी आपके प्रोग्राम को सुने। शुक्रिया भाई राजन गिरधारी और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। आपने एक गाना मांग किया है फिल्म आरजू पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में, तो चले मिलकर गाना को सुनते हैं।
1: संगीत भरी स्टेशन ये है रेडियो SBS।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म आरजू, उसी फिल्म का गाना पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में, है फूलों की रानी गाना कबूल था। इसी तरह से आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई उत्तराखंड लाइट्स रेन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। भैया राजन गिरधारी आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और इसी तरह से हमेशा रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना और अपना पड़ोसी लोग को भी सुनाते रहना। सिर्फ मिनटन ओवर हाफ तीन स्टूडियो टाइट हो चुका है। गाना जो अबकी बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में, रोटरडम शहर की रहने वाली, हमेशा भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, यानी कि रेडियो SBS का प्रोग्राम हमेशा 24 आवर्स भी सुनते हैं, शीला। और शीला भी अभी स्टूडियो की ओर तार किया है, कुछ बातें हुए हैं, कुछ हंसी मजाक हुए हैं और द माइटी मुकेश की आवाज में एक गाना मांग किया है फिल्म अनारी, उसी फिल्म का गाना रोटरडम शहर की रहने वाली शीला ने मांग किया है।

माइटी मुकेश की आवाज में फिल्म अनारी का गीत पेश की गए। प्रथम की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना, शीला की मांगी हुई ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई द माइटी मुकेश की आवाज में। और फिल्म का नाम था अनारी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम शीला सुनते ही रहना। 21, 22 एंड 23 अगस्त, 21, 22 और 23 तारीख अगस्त मिलन समर फेस्टिवल, द ग्रोटस्ट सबसे बरका वाला मिलन समर फेस्टिवल हर साल की तरह इस साल भी फॉर द 24th ईयर होगा साउड पार्क डेन हाग शहर के अंदर में, जहां पर इस साल भी डुक्सा कॉन्टेस्ट होगा। मिलन समर फेस्टिवल साउड पार्क डेन हाग में फॉर द 42nd keer, 21, 22 en 23 augustus. Jahan par bheer sa krampjes rahenge, tarha tarha ki krampjes, jahan par tarha tarha ki informatie tandrusti ke bare mein, gezondheid ke bare mein bhi aapko diya jayegi, aur tarha tarha ki informatie. खाने पीने के लिए बहुत से सामान रहेंगे, एटन आउट सुरीनाम यानी कि सरनामी खाना भी रहेंगे, इंडिया भारत देश का खाने यहां पर भी रहेंगे, और तरह तरह के प्रोग्राम भी रहेंगे। जैसे कि शुक्रवार 21 तारीख अगस्त लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद फुल बैंड के साथ, फुल म्यूजिक ग्रुप के साथ, म्यूजिक ग्रुप दिले नादान के साथ, अपना ही म्यूजिक ग्रुप के साथ रेमोंड रामनारायण लाइव ऑन स्टेज रहेंगे। फ्राइडाग 21 अगस्त, बाकी हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है वेबसाइट milansummerfestival.nl, उसी वेबसाइट की जरिए स्टैंड ग्राम आप भाड़ा पर ले सकते हैं ग्राम फॉर ह्यूर के लिए। और डुक्सा कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर करना है अपना बदराइव के नाम से तो जरूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, और अपना टिकट के लिए भी मिलन समर फेस्टिवल .nl पर आप जाइए। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, संगीत भरी स्टेशन है, नाम से तो मालूम होते हैं कि गाने ही गाने बस पेश किया जा रहा है, बातें कम। तो चले लता जी की आवाज में आपको हम ले चलते हैं फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर, दिल तो है दिल गाना को मांग करने वाली है ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की ये प्रोग्राम में मांग करने वाली है खीतन शहर की रहने वाली रखीना डाहू की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले मिलकर सुनते हैं लता जी की आवाज में।

लता जी की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, दिल तो है दिल, काफी प्यार भरी गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। मांग करने वाली थे हीटन शहर की रहने वाली रखीना दाहू की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की।

काफी खूबसूरत गाना को मांग किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं बस करते ही रहना। 10 मिनट बाकी है सुबह 10 बजे में। देश विदेश में भी काफी सुनने वालों बस हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। इंग्लैंड में नैला भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हमेशा पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम इंग्लैंड में बस सुनते हैं। और आज की प्रोग्राम में किशोर कुमार और लता जी की आवाज में गाना मांग किया है, फिल्म का नाम काम चोर। इंग्लैंड की रहने वाली नैला की मांगी हुई गाना किशोर कुमार।

0: खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था कामचोर, उसी फिल्म का गीत पेश की गई किशोर एन लता जी की आवाज पे। इंग्लैंड की रहने वाली नैला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम हमेशा नैला बस सुनते हैं और आज की प्रोग्राम में ये काफी प्यार भरी गाना एंड फिल्म यानी कि फिल्म कामचोर से बस मांग किया जो प्रोग्राम में पेश की गई है। घड़ी की ओर देखा जाए 3 मिनट बाकी है सुबह 10 बजे में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फरमाइशी इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए अगर आपको फरमाइशी देना है, घर पर कोई भी खुशियां है, विवाह है, शादी है, सालगिरह है, जन्मदिन है, बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है और आप फरमाइशी देना चाहेंगे सस्ती दामों में, आपकी फरमाइशी बस पेश किया जा रहा है। आपकी खबरें रिक्लाम जो है सस्ती दामों में और आपके घर पर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई दुख है, गमी है और आप मृत्यु समाचार मौत की खबर देना चाहेंगे तो ये भी हो सकता है। सभी काम काज तौर तरीका और वक्त के साथ बस किया जा रहा है कम दाम में। कुछ लोग तार पर मुझसे कहा SBS के पास फरमाइशे सस्ती दामों में नर्खंस अंदर्स लोग बस रिक्लाम सुनते रहते हैं और पसंद भी करते हैं, कहते हैं नर्खंस अंदर्स। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खबरें की ओर और खबरें के बाद और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी रेडियो SBS की जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbaais. €5 per verbaais. €5 per verbaais met gratis downloadlink naar de verbaais. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
2: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio SBS. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Wel is opnieuw een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries geraakt. Oekraïne heeft al verschillende vestigingen bestookt de voorbije weken. Kiev richt zich op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Moskou ontkent dat Wildberries militaire spullen opslaat. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hausstadt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Wij wensen u een fijne dag en blijf afgestemd op jouw Radio SBS.
0: Nergens anders. Sunvaluatje. Bive Brehaspatiwar Guruwarka Dinhem Chai Tarikh August Donderdag 6 Augustus ka program pesh kiya ja raha hai. Aur aaj ka program zarur aap sunte hi rahe hain. Friday 28 Augustus Raksha Bandhan ka din hai aur मुस्कुराता दुकान जो डेन हाग शहर के अंदर में है, मुस्कुराता फैशन दुकान, सबसे बड़ा दुकान जहां पर इंडिया भारत देश का कपड़े, गहने, जूते और बदंकिस के साथ बहुत से सामान यहां पर आपको दुकान के अंदर में दिया जा रहा है. 304 कांतो मीटर बड़ा दुकान है और दुकान के अंदर में ढेर सा सामान होते हैं. तो जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, फ्राइडे 28 अगस्त, शुक्रवार 28 तारीख अगस्त रक्षाबंधन का दिन है. तो यहां पर राखी अंदर आया है रक्षाबंधन के मौके पर, जो आपको सस्ती दामों में दिया जा रहा है. ढेर सा हजारों हजारों रक्षाबंधन राखी यहां पर अंदर आया है, जो आपको सस्ती दामों में बस दिया जा रहा है. जरूर आप जाइए मुस्कुराता.nl पर सभी इंफॉर्मेशन के लिए. हमारा फेसबुक पर, टिकटॉक पर आपको इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है मुस्कुराता दुकान के बारे में और स्पेशल दाम में राखी रक्षाबंधन जो यहां पर आपको दिया जा रहा है. कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 डेन हाग शहर के अंदर में है मुस्कुराता दुकान. तो चले यहां से सुनने वालों की मांगी हुई गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है.

तो चले हम आपको ले चलते हैं अबकी बार फिल्म परवरिश की ओर। मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना आप सुनेंगे। और डेलफ हाउ शहर के रहने वाला शांति प्रकाश गाना मांग किया है आज के प्रोग्राम में। और खबर किया है कि हमेशा की तरह आज भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं भाई शांति प्रकाश डेलफ्राउ शहर में, और मांग किया है फिल्म परवरिश का ये गाना मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या
0: जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है।
2: अरे क्या

0: भाई हुए हैं आज बेगाने, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं।
1: अरे कैसे?

परवरिश फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना काफी दिनों के बाद बस रेडियो पर बस पेश की गई है। परवरिश फिल्म का गीत अभी आपने सुना। डेलफखाऊ शहर का रहने वाला शांति प्रकाश का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद और एक शुभ दिन। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए फिल्म अप्रैल फूल, उसी फिल्म का एक गाना बस अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुतमेर शहर, चलिए फिल्म अप्रैल फूल, उसी फिल्म का एक गाना बस अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुतमेर शहर की रहने वाली

April. April Fool, फिल्म का गीत पेश की गई है April Fool. मोहम्मद रफी की आवाज में गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई, और सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई. आसरो मीठे नलिनी गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है रेडियो वेस्ट में एस के जरिए जो पेश की गई. शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जरूर और जरूर सुतमेर शहर के अंदर में सुनते ही रहना. एक गाना पेश होगा लता जी की आवाज में फिल्म मॉडर इंडिया, उसी फिल्म का गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं लता जी की आवाज में जो पेश होगा रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय. खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है अपने प्यारी प्यारी सहेली बेअतरिक्स जीबोध के लिए. तो चले मिलकर फिल्म मॉडर्न इंडिया का गीत सुनते हैं.

पुरानी फिल्म मॉडर्न इंडिया का गाना भी इसकी गई लता जी की आवाज में अभी आपने सुना, और खास तौर पर रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी सहेली बियात्रिक्स जिबोध के लिए ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से सुनते ही रहना। इस वक्त 11 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 10 बजने में 11 मिनट ऑन 4 हाल ऑफ स्टूडियो टाइट हो चुका है, और आज के प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को मौका दिया गया है स्टूडियो की ओर तार करने के लिए, या तो रेडियो SBS का ऐप के जरिए तार करने के लिए, ऐप करने के लिए और अपना अपना गाना मांग करने के लिए। तो अभी तक कुछ मिनट और आपको मौका दिया जा रहा है, इसलिए कि हमारा लिस्ट जो है भरता जा रहा है, इतनी ज्यादा ज्यादा लोग तार किया है और रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी ऐप किया है अपना अपना गाना मांग करने के लिए। तो कुछ मिनट

की ओर लता जी की आवाज में गाना पेश होगा। और इंडिया भारत देश नोएडा, नोएडा शहर से अरुणेशा कुलशेस्त्र एक गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में। लता जी की आवाज में चले मिलकर गाना को सुनते हैं।

अमरपाली फिल्म का गीत भी इसकी गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना और इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश कुशेस्त्रा ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। अरुणेश हमेशा और हमेशा इंडिया भारत देश नोएडा में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हमारा साथ हमेशा और हमेशा देते हैं। शुक्रिया धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और अब की बार जबकि देखते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना पेश होगा। फिल्म चाहत 1973 का फिल्म है। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले होगा। उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना की मांगी हुई गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई पद्मश्री मोहम्मद रफी एंड आयशा जी की आवाज में, और ये खूबसूरत गाना को मांग करने वाली थी उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना, ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया। शुक्रिया, धन्यवाद आपकी ऐप के लिए, और शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का प्रोग्राम, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। काफी और बहुत से सुनने वालों है जो तार किया है स्टूडियो की ओर, ऐप किया है और रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार किया है, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है। सुनने वालों यही सवाल किया है, बीते हुए दिनों भी सवाल किया है, कब हमारा रात्रि का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। कुछ सुनने वालों है जो काम पर है, नौकरी पर है, और हमारा प्रोग्राम किसी कारण बस नहीं सुन पाते हैं, इसलिए काम करना पड़ता है ना, तो उन सुनने वालों ने गुजारिश किया है रात्रि की वक्त में भी प्रोग्राम चलाने के लिए। तो मैंने सोचा भी है कि जल्द से जल्द हमारा प्रोग्राम रात्रि की वक्त में भी पेश किया जाएगी, और उस समय भी आपको पूरा मौका दिया जाएगी रात्रि की वक्त में खूबसूरत गाना मांग करने के लिए। शायद हो सकता है हमारा प्रोग्राम सोमवार का दिन या कहे सोमवार की रात्रि में पेश होगा, अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे सोमवार की रात्रि में आने वाले दिनों में प्रोग्राम चलाने के लिए। तो उस प्रोग्राम में आप सभी को पूरा मौका दिया जाएगा गाना मांग कर।

हमारा प्रोग्राम इस वक्त भी यूत्रेक्ट शहर का रहने वाला राज रामचरण भी सुनते हैं, और राज रामचरण सभी सुनने वालों को एक शुभ दिन पेश कर रहे हैं, और आप सभी सुनने वालों के लिए गाना मांग किया है, तो चले गाना मिलकर सुनते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हरदम ही गाना पड़ेगा। किशोर कुमार यूत्रेक्ट शहर का रहने वाला राज रामचरण का मांगी हुई गाना सभी सुनने वालों के लिए, और सभी को एक शुभ वैकांसी, एक शुभ हॉलीडे पेश कर रहे हैं जो लोग हॉलीडे पर हैं।

साउथर्न फिल्म का नाम किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। यूट्रेक्ट शहर का रहने वाला राज रामचरण के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। राज, आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम और जरूर सुनते ही रहना। और आपने एक तस्वीर, एक फोटो भेजा है हमारा रेडियो SBS का ऐप पर, और उस फोटो पर, तस्वीर पर आप बड़ी सुंदर दिखाई देते हो। प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना रेडियो SBS का। मॉरिशस में भी दुष्यंत झिंगरी हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और आज की प्रोग्राम में गाना मांग किया है लता जी और भूपेंद्र जी की आवाज में, तो चले मिलकर सुनते हैं। फिल्म का नाम है किनारा। लता मंगेशकर और भूपेंद्र के आवाज में किनारे फिल्म का नाम। मॉरिशस का रहने वाला दुष्यंत झिंगरी का मांगे हुए गाना आप सभी सुनने वालों के लिए।

लता और भूपेंद्र की आवाज में ये गाना पेश की गई और मॉरिशियस का रहने वाला दुष्यंत जिगरी का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। दुष्यंत हमारा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और मुझे मालूम है कि हमेशा आप रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और खासतौर पर ये प्रोग्राम पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है। एक आखिरी यह कहिए दो सुनने वालों की मांगी हुई गाना और पेशों का और सुनने वालों से निवेदन है गुजारी से गाना के लिए अब मत तार कीजिए, ऐप कीजिए, इसलिए कि हमारा लिस्ट जो है कब का भर चुका है। तो चले मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम चिराग और रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। एक बड़ी ही खूबसूरत गाना मांग किया है चिराग, फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और गाना का बोल है जब देख

फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किए गए मोहम्मद रफी की आवाज में। और ये गाना आज की प्रोग्राम में रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद बीरू का मांगी हुई गाना बस पेश किए गए। भाई रशीद आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है। काफी खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में आपने मांग किया है जो रेडियो SBS की जरिए पेश की गई है। एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश होगा मोहम्मद रफी की आवाज में। एक बार फिर से आप सुनेंगे झुक गया आसमान फिल्म का नाम। और अब की बार गाना को मांग करने वाला आम्स्टरडम शहर से महेंद्र है। महेंद्र ये गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में। तो चले मिलकर सुनते हैं एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। और ये आखिरी गीत आम्स्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र ने मांग किया है।

0: रोटरडम शहर का रहने वाला हूं। रशीद पीरू का खास मांगी हुई गाना बस पेश की गई पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में। झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। रशीद हंसराव भी थे, गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए है, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश की गई। कल शुक्रवार है, कल सुबह 9 बजे से जरूर आप सुनते ही रहना पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक बार फिर से पेश किया जाएगी। आज की प्रोग्राम में हमने आपको मौका दिया प्रोग्राम में गाना मांग करने के लिए और इसी तरह से बहुत सी सुनने वालों की मांगी हुई गाना पेश की गई। लेकिन है बहुत सी सुनने वालों जिनका गाना नहीं पेश हुआ है, इसलिए समय पर नहीं तार किए थे, ऐप किए थे। तो आने वाले प्रोग्राम में जबकि हमने आपको फिर से मौका देंगे गाना मांग करने के लिए, तो पूरा समय पर आप तार कीजिए, ऐप कीजिए। चले यहां से खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

दावा फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 11:00 प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सोनू निगम एंड तुलसी कुमार, दबंग 2 फिल्म का नाम। 2012 में ये फिल्म जो रिलीज किया गया

दबंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों हरे का मुखाज के लिए तार की नंबर रेडियो एस बी एस का है 2302656660। इसी तार की नंबर पर हमेशा आप हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, या तो मेल कीजिए रेडियो एसबीएस का वेबसाइट के जरिए, और उसी वेबसाइट के जरिए हमारा रेडियो एसबीएस का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। द हिक फिल्म का नाम सॉन्ग बाय अलका और गाना का बोल है मेरी जान है तू।

0: फिल्म का नाम था, उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। टेम्स रेव 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो इन दिनों डे या बे प्लस रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम को सुनते हैं। हमारा प्रोग्राम अच्छी आवाज में, अच्छी साउंड में पूरा के पूरा हॉलैंड देश के बीच में नीदरलैंड में ये प्रोग्राम डे या बे प्लस द्वारा सुनाई देता है। तो अपना घरों में, अपना मोटरकार में आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी ये प्रोग्राम डे या बे प्लस रेडियो के जरिए बस सुनाई देता है। और इन दिनों काफी सालों से भी सभी नए नए मौतकार में बस डे या बे प्लस रेडियो होता है, तो उस पर हमारा प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। अपना डे या बे रेडियो पर तलाश कीजिए रेडियो SBS। चलिए प्रोग्राम में हेडलाइन न्यूज की ओर हम आपको ले चलते हैं, उसके बाद फरकेट्स इंफॉर्मेशन दिया जाएगी।
1: दिस इज एडो पेटर्स मेट द हाफपुंटे फ्रॉम द रेडियो न्यूज ऑफ रेडियो SBS। Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

डेंजरस इश्क फिल्म का नाम गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। अदनान सामी खान एंड तुलसी कुमार प्रोग्राम में होगा। गाना कबूल है साथिया द मूवी डार्लिंग उसी फिल्म से।

रेडियो एस बी एस के जरिए आई द फिल्म डार्लिंग, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना अदनान सामी और तुलसी कुमार की आवाज में, ये गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई। आहिस्ता आहिस्ता हम सभी दोपहर की ओर जा रहे हैं, मेरा की ओर।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में नीरज श्रीधर और श्रेया जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुमार सानू और साधना सरगम प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना और कुमार सानू जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है,

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले हम आपको ले चलते हैं एक गाना हरिहरन एंड कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11।

इसकी गई है। हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सरो मीठे की गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।

अदनान सामी और श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: यूएसबी इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एडो फिल्म हमको तुमसे प्यार है उसी ये फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक बार फिर से उदित नारायण प्रोग्राम में हमारा फिल्म का नाम
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा रहा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। उदित नारायण की आवाज में आई फिल्म हबरास, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चले कुमार सानू और अलका जे की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए हेड फिल्म क्यों हो गया ना, इसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए जेम्स की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL और उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम सुनाई देता है और जिस तरह से भी आप सुनना चाहेंगे आप हमारा ये रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ है इस तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए टेलीफोन नंबर है 03-25-65-65-60 या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। आपको खबर किया जा रहा है रेडियो SBS का कंतूर का टेलीफोन नंबर जो है 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है। और आपको भी खबर किया जा रहा है जरूर आप तार कीजिए हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्फो लेने के लिए। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में अबकी बार पेश किया जा रहा है। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली है। गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

हमारी सभी सुनने वालों को वेलकम कहा जा रहा है। जिन लोग प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, किशोर कुमार अनाश प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार फिल्म जवानी दीवानी, उसी खास फिल्म का गाना की ओर। किशोर कुमार एन आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में किशोर और आशा जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम यादों की बारात, सॉन्ग बाय किशोर एंड आशा। और गाना

खूबसूरत प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए किशोर दाशा जी की आवाज में ओ मेरी सोनी। फिल्म यादों की बारात उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। तो उसी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, अपना अपना रिएक्शंस कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। टेलीफोन नंबर है स्टूडियो का 03-22-66-66-11। मुकेश और आशा प्रोग्राम में है, तुम्हारी कसम फिल्म का नाम है।

तुम्हारी कसम फिल्म का नाम आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना आज की प्रोग्राम में किशोर एन आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है जुदाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार आप सुनते ही रहना। 1980 का फिल्म है, फिल्म जुदाई, गाना जो अब की बार आप सुनेंगे मार गए मुझे तेरी जुदाई, सॉन्ग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मार गए मुझे तेरी जुड़ाई। खूबसूरत प्यार भरी गाने रेडियो SBS के जरिए बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले सुमन कल्याणपुर एंड मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी।

0: सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी की और हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।
1: जब से आंखें हो गई तुमसे चार,

रेडियो SBS के जरिए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर किशोर एन लता जी की आवाज में।

पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आपकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, एक गाना होगा एडो फिल्म अपने अपने, सुरेश वत्कर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना और प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

0: तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जिन्नी वेद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में आप सुनिए, सावन में लग गया के दिल मेरा।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, चाइना टाउन से। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा।

पैसा ये पैसा आपने सुना टोटल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

रेडियो बेस के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहार।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज़ में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियाँ और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार शानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे। मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में।

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तो लहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आ जमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जी ने करदा।

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

0: लंका कर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

सोनू निगम, अलका याचिक और कोरस की आवाज में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्ट काबिल हूँ मैं, खुशों दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

दिल में सनम की सूरत, आँखों में रोशनी है, मेरी खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। इस खसंगद और कुमार सानू एंड अलका याचनिक एंड क्वाम आउट द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। एंड आउट द फिल्म रूही कम खसंगद और सचिन जिगर, असीस कौर एंड दिव्या कुमार पनघट।

मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म अनारी से, दिल की नजर से। और अब आप सुनिए पुरवैया शंकर माधवन की आवाज में फिल्म तूफान।

कुणाल गांजावाला की आवाज में आपने सुना फिल्म क्यूंकी से। दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब आप सुनिए नेहा कक्कर, मनोज म्यूजिक और हर्बी की आवाज में फिल्म गुड न्यूज से, लाल घाघरा।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।